0: एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे
1: हैं
0: ना करें।

0: एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे।
1: कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए?
0: जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर
1: आएंगे।
0: उसके पहले भी हो सकता है।
2: As the political fallout from the NEET UG controversy continues, Dharmendra Pradhan's resignation has answered and resolved one demand, but many more remain. With that, we wrap up some of the top developments of this hour, but we'll keep tracking this particular development on the other side as well. Stay tuned to We On World is One. Thank you for watching.

0: gateway to the Red Sea and one of the world's busiest shipping routes. Then on Friday came another attack by Houthi rebels on another Saudi-linked vessel. And this caused a lot of damage to the vessel's hull. In response, Saudi-led coalition carried out airstrikes on Houthi military targets in the Red Sea port of Hodeidah. They said the strikes were aimed at protecting commercial shipping and they were not intended to widen the conflict. Now, in a tit-for-tat move, Houthi rebels say that they launched a missile attack on the southern Saudi city of Jizan. Visual surface showing clouds of smoke rising following the attack on a Saudi Aramco oil refinery in Jizan. The attack comes after the kingdom issued brief warning to residents in Jizan and Yanbu after the Houthis threatened to retaliate. Incidentally, tensions between the two sides, they date back to 2014, after the rebels took control of Yemen's capital, Sana'a. In 2015, the Saudi-led military coalition intervened the following year. In 2022, a UN-brokered truce between the Houthis and Yemen government, supported by a Saudi-led coalition, which lasted for 6 months. While it significantly reduced fighting until now, it never evolved into a permanent peace agreement. With missile attacks, a naval blockade and fresh airstrikes, that four-year period of relative calm has effectively come to an end. With Strait of Hormuz shipping disrupted, Saudi Arabia has been relying on the Bab al-Mandeb route for oil exports. That route is now under pressure after the Houthis announced a maritime blockade targeting Saudi-linked vessels. The Houthis had previously disrupted global shipping around the Bab al-Mandeb after launching attacks on vessels in late 2023 amid the Gaza war. The attack ceased after a Gaza ceasefire was announced in October 2025.
1: धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन एफआईआर को उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए ये भी हमारी सेकंड मांग थी सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके खिलाफ इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग या एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी
2: जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट की नीट विक्टिम्स की फैमिली के लिए मांगा था
1: उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ सर मे बी इफ यू कैन।

0: मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटर्न मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में चार पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी दो डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके फाइव पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक फोर पॉइंट्स था उसका लबो लबाव ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो फाइव पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस फाइव पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो विवाद रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
1: On that note, the Kokrol Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
2: हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई।
0: चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया।
3: Well, those were the latest statements coming in from the third round of talks between the centre and the CJP leaders. And the big announcement is, of course, that the CJP has chosen to withdraw from the agitation in good faith and with effect immediately, given that the government delivers on the promises and the agreements which were which had taken place during the meeting. And to get us more details, our correspondent Dharamjot Kaur is joining us on the phone line. Dharamjot, you heard the latest statements coming in from the talks and the CJP has now agreed to withdraw the agitation. What do you make of it?
4: Well, Deeksha, I mean, this is clearly a very, very big win for the Kokhroj Janata Party and also for the thousands of protesters who have been gathering at the protest site at Jantar Mantar, and also at different protests and marches that have taken place across the country in the past few days. Now, the government that has been represented by JP Nadda also first said that, and I'll quote him here, "I request all protesters to withdraw their protests and to work peacefully in the future." And following which we heard the CJP representatives, the spokespersons, also announcing that the Kokhroj Janata Party has officially withdrawn the agitation in good faith, and that now the protesters have been asked to return home peacefully. It has been discussed and now communicated that the copies of all first information reports, the FIRs, which have been filed in several police stations, will be made available to the CJP representatives. And they've also said that the government has given assurances that all the withdrawal process will be completed and no action will be taken in the future against CJP protesters and the organizers as well. And they've also said that the government has agreed to share a written document by Tuesday regarding all the guarantees that they have agreed upon, especially withdrawal of the FIRs to avoid any sort of legal or punitive action against the protesters. CJP also mentioned that they had already submitted the five demands which were in their charter regarding the education reforms that should now be discussed and undertaken for the future of India's education system. And so they will be meeting again with the government leadership, with the senior leadership of the BJP-led NDA government, to discuss those charter demands. So this is not the final meeting between the two sides. The agitation, the physical demonstration, has been called off and withdrawn now. Everyone now needs to go home. It's a victory for the youth. It's a victory for everyone who wanted accountability from the highest corridors of political powers in this country. And now it is the next phase that we're looking at, Deeksha. We're looking at a conversation and dialogue and reforms in India's education system with specific focus on the competitive exams that take place.
3: Absolutely, Dharamjot, and it's remarkable what, you know, the 1 month of protest by the Gen Z have been able to achieve. And although the protesters have been asked to go back home and the CJP has officially said that they will be withdrawing from the agitation, but we do understand that the discourse is not going to just dispel. They have very forcefully and unequivocally reiterated their core demands, and the government has also been very, they have very positively considered all of it, but how do you see it panning out in the
1: immediate? उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसी कोई एक्शन ना ले वो डिमांड था. ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए. एक मिनट, आप बताइए. देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया. लेकिन हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किए और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे. सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा.

0: कर दिया गया, पीएम को अब्यूज किया गया, उसकी कॉन्टिन्यूटी कौन
1: है? देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज की पिछले लास्ट के कुछ तीन चार दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली
2: गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया जिन्होंने ये वायलेंस किया ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है, ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शन के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स है एंड जो एंकर्स है और जो एडिटर इन चीफ है उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स उससे लोग खुश नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा।
3: We also have our correspondent Siddhant Sibba joining us. Now, Siddhant, you heard from the CJP leaders and also the centre, but now that the protest has been called off after a rather remarkable victory of the youth of India and what they've managed to achieve in the last 1 month, they've also reiterated that they would not let the government off the hook and they would continue to hold them accountable. But do you see that momentum permeating in the, you know, the days and weeks to come, as they've just mentioned in the statements?
4: I'm just coming out of the protest site at Jantar Mantar. We have to come out to do lives because that area has no internet. Of course, there were visuals of jubilation on this on the ground there. A lot of Indian flags as well. We know that just a short while ago there was this press conference by the government and the Cockroach Janata Party representatives, where the big announcement clearly is that they have withdrawn their protest, they have withdrawn their agitation and asked the protesters to leave the site. There is a 4-week time frame where of course other demands will be fulfilled, but it could be easily said that all is well that ends well, but of course there is political blood that has been drawn with the resignation of Dharmendra Pradhan, who is the first minister to resign in this government, and that was the non-negotiable demand of the protesters, the leaders of the Cockroach Janata Party. Now, we know that this agitation started because of the NEET examination scandal. And thereafter, we know that essentially there was a lot of anxiety for many students across India that what about a transparent examination? Because that is one way of social mobility in this country. And if that exam faces a question of credibility, and of course corruption charges, then of course there is a lot of worry for them. The government of course on its part has taken several measures. The resignation of Dharmendra Pradhan is the political aspect of it, but in terms of the fundamental actions, the Indian government has taken measures like action against the officials who are corrupt in this entire process of examination that was taking place. Also the removal of the education secretary as well. The Indian Prime Minister has spoken, including on Instagram, to the youth and promised stricter measures. The Indian government plans to bring a law also against those who are involved in such activities. And this, of course, became the rallying point for many students. And of course, the Cockroach Janata Party clearly focusing on that aspect. And if I can give you a context as well, having covered previous protests in 2012-2013, every protest has given leaders in the past as well. In the last century, in 1970s, there have been student agitation and new leaders have come. Will this agitation lead to new student leaders is, of course, the big question. But essentially, there are many questions.
5: लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाई उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें, तो लद्दाख में बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है।
3: Let's now go back to our correspondent Siddhant, who's with us now. Siddhant, also talk to us about the reactions that have been pouring in. We just heard from Sonam Wangchuk, who has hailed it as a victory for democracy, and he has also hailed the youth of India for peacefully getting the government to heed to their demands.
4: Well, yes, reaction coming from Mr. Wangchuk himself, who in many ways spearheaded this protest before, of course, he was taken by the authorities, by the police, to the hospital, which was criticized by many. Now, when it comes to the reactions which have been pouring in across political lines, of course, there are politicians who are claiming it as their own victory, but clearly it is seen as a clear victory for the Cockroach Janata Party, the student leaders who have been sitting there at the protest site. But a big political week for India. It is rare to have such kind of development in terms of the political action in India in many years. In fact, the first resignation coming in, of course, the various political parties